और सतगुरां ने इस इलाके दे दसवंद लई ए सेवा इस नूं दित्ती होई जी। और भाई फगू जी बड़े सिदक और प्यार वाले संत घर घर जाके गुरु के सिखां पासों दसवंद

बहादुर सच्चे पातशाह मेरे घर आके चरण पान। इसने दरवाजा भी अपने घर का इतना बड़ा बनवाया कि गुरु साहब नू घोड़े तो ना उतरना पवे, घोड़े समेत ही मेरे

अज ए खुशी दी खबर इस नू मिली के सतगुरु थोड़े दिन तक धन गुरु तेग बहादुर साहब आ रहे हैं। ता इसने जिथे जिथे भी कोई गुरु का सिख सी जाके दसवंध लिया गुरु के खजाने विच रख दिता भई गुरु साहब आनगे ते एक एक दा नाम लैके दसवंध मैं भेटा करांगा गुरु के सिखां दा। सारिया कोलो जो भी किसे दी कुछ श्रद्धा है गुरु दे लिखे दिंदा ए लिया के गुरु के खजाने विच तजोरी विच रख दिंदा। एक माता इसने जाके आख्या भाई कोई गुरु लेके दसवंध देना ही माई कुछ घर की कल्पना करके बड़ी औखी हुई हुई सी झाड़ू दे रही सी आख्या ये कोई दसवंध लैण दा समा है आख्या जो कुछ यही भाई दे दे ते जेड़ा भी उस झाड़ू दे नाल कूड़ा कट्ठा कीता सी ओ चुक के उसने पाई फगू

अज ओ सुभाग शमा ओ सुभाग दिहाड़ा आया धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह अज भाई फगू दे

अपने दर से प्रवान कर दी। एक गुरु नानक का दर है जिथे प्यारी सात संगत एक तिल मात्र भी सेवा की हुई व्यर्थ नहीं जाती। इसे पाई सब

रस्ते विच एक गरीब सिख जिदा नाम ही इतिहास विच भाई गरीब लिख उदा भी मन उमंग दे नाल भर आया पर नेत्रों तो जल आ गया जदों मन विच सोचिया भी मेरे पास तां कुछ

एक कौड़ी मेरे पास है, कोई हजूर दे सुंदर दोशाले बेटा, करेगा कोई तान करेगा, कोई सोना करेगा, कोई कुछ करेगा, ते जदों मैं एक कौड़ी बेटा करांगा, क्या मैनू शर्म ना आएगी, लज्जा ना आएगी। पर फिर मन में आवाज आई हो गुरु तक गरीब निवाज है, वो तो माया नहीं वेखदा, वो तो सिख का हिरदा वेखदा, प्यार वेखदा, ते ए गुरु का सिख भी इस टोली दे नाल तुर पिया, ते जा सतगुरु दे दरबार पहुंचे, संगतां कीर्तन विच जुड़ियां, कीर्तन तो बाद जदों अपने अपने दसवंध पेटा कर लगियां संगतां, सारियां संगतां दे नाम बोले।

काफी समय काफी टाइम बीत गया। तांगुरु अर्जुन ने बादशाह कहने लगे, भाई अजय एक ऐसा सिख है जेड़ा सानू पेटा नहीं दे रहा, पेटा रखी बैठा। एक कौन रखी बैठा?

पर मेरे पास है भी तो यही फौजी। ये बेचारा उठता नहीं शर्म दे मारे। लांगरी सिंह आ गया महाराज, लंगर तैयार है, तुसी छकोगे तो संगत भी छकनी, ते आप कृपा करो धन गुरु अर्जन देव।

अजे एक सिख ऐसा बैठा जिड़ा सानू पेटा नहीं दे रहा ते ओ पेटा देवेगा ते फिर दीवान दी समाप्ति होवेगी अरदासा होवेगा। सात संगत बोलो श्री वाहे। गुरु का हुक्म सुन के ए भाई गरीब नेत्रां तो जल आ रहा नीवियां पाके हौले हौले गुरु के दरबार में आके सतगुरु ने चरना भी बह दिया। सचिया पातशाह ओ मेरा देशाई तू अंतर जामी है तू घट घट दे जानन हारा है जिथे एडे राजे महाराजा।

तेरी पेटा लई तो मैं कदों का इंतजार कर रही, तेरी पेटा लई तो मैं इत्थे बैठा हाँ, मैनू तो सिदक दी पेटा चाहिदी है, प्यार दी पेटा चाहिदी है। जे प्यार है तो सबो कुछ है, जे सिदक है तो सबो कुछ है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने एक सिख जेड़ा एक कौड़ी बेटा लियाया सी, शैव जी ने बड़े प्यार दे नाल एक कौड़ी अपने हाथ विच रखी ते सिख नू नाम दी दात बख्श के जन्म मरण तो रहत कर देता। तो भाई साहब कहंदे ने पावनी भगत भाए, कौड़ी अगर भाग राखे भाई गुरु ने तो तेरा हिरदा देखना है, तेरा प्यार देखना है, तेरी माया नहीं देखनी, वो तो जुगा जुगंतर देना आ रहा है। जे उसने माया देखनी होवे तो उदे एक अख दे फुलकारे विच एक भिखारी नू चक्रवर्ती पातशाही मिल सकती है। वो तेरी माया दा भुखा नहीं, गोविंद पाओ भगत दा भुखा, तेरे अंदर सिदक है गुरु सदा तेरे ते निहाल है, सदा तेरे ते दयाल है। भाई साहब गुरदास जी कहंदे

राग भीम पलासी, दो राग ए आपस विच बहुत मिलदे ने, धनासरी ते भीम पलासी इको ही सुरां ने इन्हां दियां। सिर्फ केड़ी सुरते ठहरना है भीम पलासी विच ते धनासरी विच, केड़ी सुरते इदा ठहराव है, ठहराव करके ही इस दे राग दा रूप बदल जांदा है। भीम पलासी विच मध्यम ते ज्यादा ठहरना पैंदा है ते धनासरी विच पंचम ते शब्द भी धनासरी राग दा है। जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बो तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। तीन ताल विच इसकी बंदस है, अति सुंदर बहुत। सो आप जी श्रवण करो।

गुरु नानक सच्चे पातशाह एक जंगल विचो विचर रहे हैं। अकाल पुरख की कुदरत नू तकदे हां साहब जी मरदाने नू पुछन लगे मरदानिया मौत नू कितनी कु नेड़े समझता है। मरदाने ने आख्या गरीब नवाज सच्चे पातशाह असी अलपग जीव हां आप सर

गरीबी आज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आने वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तुम्हें मौत नू दूर समझदा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहां ने हाथ जोड़े और मेरा देसाई आप कृपा करो, आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। ता धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता, आख्या हम

बहु पर पंच कर पर धन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नबेरा तेरे जी पहले। जेरी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेका रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत न बेड़ा तेरे जी पै लीजे। एदे अमोलक स्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ स्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे दिंदा हां, मैनू कुछ स्वास उस दे बदले।

गुरु नानक सच्ची पातशाह बख्शिश कर दिया न भाई, पही प्राप्त मानख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। ए प्राप्त होए हन तेनु अमोलक श्वास, ते जितने तक दुनिया में

आप बोलना चाहता है तो परमेश्वर की भक्ति कर, ओदा कीर्तन कर, ओदा जस कर, ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जाएगा। इसलिए जब लग दुनिया रहिए नानक किछ सुनिए, चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए। मिथत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत, जिन्हां नूं ए चंगे गुण प्राप्त हन भई, उन्हां दा संसार ते आउणा सफल सफल हो जावेगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह

0: तेरा धर्म जित भेटे साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: पेरनी दी चुगी विच पहुंचे भगवान, जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जाऊं। कुछ आदास छाया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना, नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जी पीरनी भुख लगी है। आखो श्रीवाल पीरनी डाडी भुख लगी है, कुछ खिला। रब नू बड़ी भुख लगी है। बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी महाराज, प्राप्ति वाले महापुरुष, नाम जप के नाम दी प्राप्ति। नाम जपना होर चीज है, नाम दी प्राप्ति हो। जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे न भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है। तुरे तां हन जेड़ा तुरया है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है। कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरया ही नहीं है ओ पहुंच कि नहीं सकदा।

Ben de hisse verir. Guru Maharaj'ı longing present करते हैं, longing पेश करते हैं, एक प्यास, जरूरत, एक तड़प का जिक्र करते हैं। राखे हन मन लोचे हर मिलन को, मेरा मन परमात्मा नु मिलना लोचदा है, इसके अंदर बड़ी भारी लोचा है। जदों परमात्मा नु मिलन दी जीव के अंदर दुख लोच प्यास पैदा हो जाए, समझो उसके अंदर बाकी तमाम चीजां ले वैराग हो गया। वैराग का अर्थ के बाकी तमाम चीजां के विचों वो डिसइंटरेस्टेड हो गया, ही हैज नो मोर इंटरेस्ट इन वर्ल्डली थिंग्स। उसके अंदर एक ही प्यास है कि वो उसको जो बनाने वाला है, सारी सृष्टि में साजन वाला है।

अचल अविनाशी, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुर्मत मल नासी, सतगुर चरण कमल रित धारण।

हे रविदास, किस आज से बैठा है कभी ना तेरे दर्शन हो गए। सास संगत जिदे मन विच इन्ना वैराग होवे वो फिर दुनिया दे राग रंगा वाल धन दौलत वाल किवें ध्यान।

कि सब कुछ है जो सत वचन नहीं तो फिर कुछ भी। एक कथा केवल सुनन वास्ते नहीं सिख्या वास्ते के पति पत्नी होन ते उन्हां दा सुभा और विचार कैसा होवे। भगत कबीर साहब बारे कबीर साहब कहते ने अखबार ते घरवाली कहती है सत वचन। हुण इस नूं सुन के असी अपने मन विच देखिए असी किन्ना कि एक दूसरे का कहना मनदे। पति कहता है ते घरवाली जी करके अगू बोलती सत वचन कहती या घरवाली कुछ कहती है।

बचा रहे हो। पर माता पिता और दुखी हो गए। अगे ते पुत्र दानी सी, अगो नू भी दानी निकली, अगो सतनाम सिरवाए। एक दिन माता पिता ने कहा, रविदास तेनू पाले और तेरा विआह कर देगा। सोचे असी तू कमाई करके सानू खवाएगा, पर तू ते दानी, असी तेनू कमा के नहीं खवा सकते। इस तरह कर, जो समान चाहिए लै लै ते वखरे हो जा। साडे वालों कमाई कर, साडे वालों दान करी। माता पिता ने वखरे आकर दिता। शाही रस्ते ते अपनी चौकी पा ले, चौकड़ी पा ले। पर अजमान डाढ़ा दुखी होया। मापिया ने केवल इस करके वखरे कर दिता कि मैं पैसे नहीं कमांदा, ते की दुनिया में जो सारे रिश्ते तन दौलत दे। मन दुखी होया ते अपने माधो दे नाल शब्द द्वारा इस तरह फिर भगत जी वचन करते।

कोई पैसे दे गया था, मैं टेक दे नहीं देते था, बीती हालत ही हो गई। कई कई दिन भगत जी भूखे भी रहे पर भक्ति नहीं छड़ी। इना दिना गंगा ते बीजन छत्र दा मेला लगया करदा सी। एक दिन घरवाली ने कहा, भगत रविदास नूं भगत जी हजारां लोग गंगा इशनान करन जांदे ने, मेरा भी चित करदा है असी भी गंगा इशनान करन चलिए। भगत रविदास कहन लगे, भलिए लोके सब तो वड्डा तीर्थ परमेश्वर का नाम है, नाम करके ही तीर्थ हैं, पर जे तेरी इच्छा है तो आपां चलने। महापुरुष गुरु तीर्थां दे इस वास्ते जाते ने ताकि भुले भटके लोगों को समझा सके। गंगा घाट पहुंचे ते की देखिया, हजारा लोग गंगा इशनान करन आए। कोई गंगा विच सोना, कोई चांदी, कोई कपड़े, कोई दीवे जगा के टूनिया विच रख के गंगा माई नूं भेंट करदा है ते गंगा दा पानी रोड़ के लई जांदा है। लोग खुश हो रहे हैं कि साडी बेटा गंगा माई ने प्रवान की। पर भगत रविदास एक पासे खड़े हैं, इशनान करन तो पहला घरवाली नूं कहन लगे, भलिए लोके लिया कसीरा, इशनान करन तो पहला गंगा माई नूं बेटा दे, ओ दमड़ी कसीरा। भगत जी ने हाथ विच लिया कसीरा, गंगा दे पानी विच जद सुट रहा ते साध संगत ओ हजारा लोग हैरान हो गए। पानी दे विचों एक हाथ बाहर निकले, ओ कसीरा उस हाथ ने पकड़िया ते एक आवाज आई, रविदास तेरी बेटा गंगा बाई ने प्रवान की थी।

गंगा स्नान करेंगे। भगत जी घर वापस आए, दिन बीतते गए। एक दिन एक महात्मा रविदास जी की चुप्पी में आए, अपने स्वभाव अनुसार जो कुछ बल्ले सी सेवा की। जान लगे वो महात्मा, कहते ने रविदास तू बड़ा गरीब है, तेरे को माया नहीं है, मेरे को एक पारस है, एक पारस तू ले ले। ये पारस जिन्हों भी लाएगा वो चीज सोना बन जाएगी, सोना बाजार बेच ते सोने मंदिर मकान बना, आए गए की सेवा कर। सत्संग भगत रविदास जवाब की देते उस साधु, कह लगे महात्मा मेरे को इना समा नहीं कि पहला मैं पारस के नाल सोना बनाव, फिर उस सोने नु बाजार बेचन जा, जिन्ना समा मैं सोना बना के बेचना है उन्ना समा मैं होर नाम ना जो

हर कोई गुरमुख भी नहीं हो सकता। आप माता जी में मर्जी कह देने हैं, आओ गुरमुख हो गई आओ। अजकल तो लोग दोहरी जिंदगी जीते, उत्तों कुछ होर ते बाहरों कुछ होर। उत्तों दिखावा इना के देखण वाला ए कवे कि एदे वर्गा कोई गुरमुख है, एदे वर्गा दानी कोई, एदे वर्गा पुन्नी कोई। ते अंदरों अंदरों लालसा ऐसी कि जे वास चले ते सारी दुनिया लुट के खा जाए। इथों तक देखिए कि लोग धर्म के नां से भी ठगियां कर दी, थोड़ा जिहा दान पुन कर दिता लोगों नूं दिखाण वास्ते ते बाकी सारा कुछ आप सांभ लिया। वड्डियां वड्डियां उगराहियां भी होंदियां, थोड़ा जिहा लोग लगांदे ने धर्म के नां से ते बाकी आप सांभ लैंदे। धार्मिक स्थानां दा भी इह हाल ते धार्मिक लोग

बड़े समय बाद ओही महात्मा फिर आए, पगली ओही हालत ते पुछ देने रवदास, मैं तेरे एक पारस दे गया सी। ते भगत जी कहते ने मैनू ते पता नहीं, जिथे रख गए सी उथे पिया होगा, आखो सतनाम सिख। वो पारस दरवाजे दे नालों खोलिया, पारस हाथ विच पकड़िया, ते वो महात्मा कौन है? वो महात्मा और कोई नहीं, आप हरि परमात्मा है, आखो सतनाम सिख। प्रिख्या लैन आए सन, समझ गए भगत ने माया ते काबू

कहते ने है इंसान तो कादा हंकार करता है कभी अपने बारे सोचे है तू है कि हड्डियां का पिंजरा दुआले मासल बैठे हैं और दुनिया भर का गंध तेरे अंदर और तू अपने आप को समझता है कि मैं पता नहीं की कुछ हो गया। एक गल याद रखना जो आप गदगी बाहर देखते हैं कि बाहरों नहीं आई ये इंसान से की थी हुई। भगत जी कहते हैं दुनिया भर का गंध तेरे अंदर ते तू अपने आप को बड़ा कुछ

माया मन तोल करदा बुजुर्ग मर जाए ते दिया पुत ओ अंदर मन विच सोचदे ने हुणे वड्डा ते मर गए हुण ए देखिए कि साडे हिस्से विच की आंदा है आखो सतनाम श्री भाई अवर मरत माया मन तोल मन विच ए तोलदे ने कि हुण साडे हिस्से विच

वाणी के सारे कमाल दी, परे पंक्ति में कमाल दी। राखो कान उसारो नहीं हो, भगत जी कहते ने डूंगिया नहीं आपो, वड्डी कोठी बना, महल बना, किला बना। कोई बच्चा होवे बुढ़ा पावे जवान, सौण वास्ते जगह साडे तेल ते चाहीदी। कोई बच्चा मरे बुढ़ा पावे जवान मरे, जिथे साड़िया जांदा है वो जगह भी साडे तेल नाथ होंगी। भगत जी कहते ने जो मर्जी बना लै, अखीर तेनू जगह साडे तेल नाथे मिलनी। आखो सतनाम सिंह।

समय नाने के शब्द पूरा पड़ी शब्द सुने राणी का अता गुस्सा ते जांदा रे ते फिर राणी ने कहा चलना भाई कुछ ब्राह्मण आए ने बनारस तो कहते ने तू चमार नु गुरु बनाए राणी कहन लगी चलो मेरे नाल दरबार आके उन्होंने पंडितों को कहा जिन्नी चुक सको उन्नी धन दौलत दे आगे सच दसो सच्चा भगत कौन है आए माया वास्ते सन जद माया मिली ते जेड़े पहला निंदा करते सन ओही कहन लग पे भगत रविदास वर्गा ते भगत ही कोई नहीं आखो सतनाम सिंह है माया जी मिल गई खैर गल कोई भी होई असर यह होया कि राणा भी श्रद्धालु बन गए भगत जी ने चितौड़ बुलाया कई दिन सत्संग होता रहा और आज आखिरी दिन बड़ा वड्डा पंडाल लगा राणी का सदा तो फिर कौन ना आवे हजारां लोग पंडाल

पग जी ने बुआ बंद कर ले, पर आज मन डाढ़ा दुखी होया। मन विच वैराग आया, साथ संगत भगतां दा गुस्सा गिला दुनिया नाल नहीं होंदा, रब

कि मैं बड़ा ऊंचा हूं। मैं तो हमेशा ये भी कहना कि मैं बहुत नीवा हूं। मेरा बहन उठना भी नीवियां दे नाल पर एक गल